तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापे जबे बेअंता तेरे नेक पड़े वो सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरखा परंपर करता जी तुझ जे बड़िया वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सृष्ट सब भाई जी तुद आपे सिर सब गोई

तू करता सचार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया।

तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी अजंत सब तेरा खेल, वियोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, अर गुण सदिया बुखाने।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाहे दसवें चौपाई पुनराशिस का काटा सीसा श्री अस्केर जग के ईसा। पौ पुन मृष्ट गगन ते पई सब ने आन बधाई दे। तन्य तन्य लोगन के राजा दुष्टन दा गरीब निवाजा। अखल पवन के सिरजन हारे दा जान मोहले ओ भारे। कव्यो वाच बेंती चौपाई

हमरे दुष्सवे तुम कावो आभादे मोय बचावो सुगी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सुवे करतारा मोर छानज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर पैन की रे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे वरिये मन काल का त्रास निवरिये

जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन बजायो, आद्य अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो मारा।

एक रूप अनूप सुरूपा रंग प्यो राव के भूपा अंड जेर से तिनी उतुज खान बोर रज दिनी कौ फूल राजा वै बैठा कौ सिमट प्यो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंभव याद जुगा स्वरूप स्वयंभव अम रक्षा मेरी तुम करो सिख भार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत दुपाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुता सरनी परे तिनके दुष्ट दुख थुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आई है ताके काल निक नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट डरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए नारे हो ताके ताप तनक मोह हरे हो ताके ताप तनक मैं हरे हो रिद सिद्ध कर मोह सब होई दुष्ट शास वह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुमारा काल पास देता है उबारा जिन नर नाम त्यारो कहा दार दुष्ट दोग तेरा खड़केत में सड़न त्यारी आप दे लो उबारी सर्व ठोर मोह साई दुष्ट दोग ते लो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किल बिक सकल दे को हरता दुष्ट दो खियन को सह करता श्री अस्तु जब पै दे आला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावे सोई दुख नंत से व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाय सोस ना पावई सुने मूड चित लाए चतलता आवई दुख दर्द पौ निकटना तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपई को कहे चौपई सम्मत सत्रह सहज पणि जय अर्ध सहज पुन तीन कहे जय पाद्र सुधि अष्टम रविवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा हित श्री चित्रोप ज्ञाने त्रिया चित्रे मंत्री पूसमांदे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अंशु दोहे राधा जान कर दास पर की जय कृपा पार आभा दे राख मोए मन क्रम बचन विचार चौपई मैं न अंग्रेस प्रथम नाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिवलागी मोरी पग इन सो

निलय। तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज।

अपना जान करो पतबारा तुम स्वयं मैं दास मैं किं कर तारा दा जान दे हाथ बारो हमरे सब बैरियन संगारो।

वाच दोहेरम जो निज ब्रह्मो सो का सो कहु जग माहे जो ते प्रभु को त्याय है अंत स्वरूप को जाए दोहेरम हर हर जन दुई एक बिब विचार कर सनाहे जलते उपज तरंग ज्यो जल ही बिगे समाए दोहेरम जब आयस प्रभु को प्यो जन्म तेरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप दे सब हूँ कहर सुनाए कवे वाच दोहेरम

साध साध जानो नहीं बात सो बात विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद स्वय पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो

मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया कर शांत सुख मन आय वसया जिने इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया ए बड़ियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द रोपे आरो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द जित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत उदवस किते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक दैसक हो तित घर अनहद वाजे अनहद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया। उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रह अपर पूरे बेनवंत नान गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे मंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पियो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पियो जिसका सब सुधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो ए वस्त तजी न जाए नित नित रख उधारो। तुम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो शोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाए मेनू जो कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मैं राम तोई सतगुर सज्जन मिलिया।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ

जन्म मरण दुख जाहे वाहेगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद टोडी महला पंजवां।

गुरमुख पंथ पूरण प्रताप है, सच सिद्धक सच पीर पछापै, सच पीर मिल सत संगत खोज।

दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होवे प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे

संसाई दिस पर हरे चंदन ले बूतारे धोए करत प्रीत पसम संग होए अंधकूप मैं पतत विकराल नानक काल लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग पचारा करे दिन रात बार भेख अंतर मल माया शब्द नाई किस करे छपाया बार ज्ञान ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टम तवर सी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर पुकार महा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम उधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत ब्रह्म ज्ञानी अबुद्ध्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाये महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए राखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी, घर घर सुनी सर्व ज्ञानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत, श्लोक संत सरण जो जन परे, सो जन उदरन हार, संत के निंदा नानका मोर भौरे अवतार अशपरी, संत के दुखन हार जा कढे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा तेहीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान पृष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नान, संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख भवे, संतन के दुखन काग जन लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिक जोन क्रमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी गाथा को नाए, नान संत भावे ता ओई भी गत पाए, संत का निंदक महा अतताए, संत का निंदक खंटे कन्न पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा,

जेहो जाना आखा नाए कहना कथन न जाए गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए तीर्थ नावा जित पावा विण पाने के नाई करी जित सिर उपाई विखा विण करमा के मिला लई

असंग मोर ख्यांद कोर असंग चोर राम कोर असंग कमर कर जाहे जोर असंग गलबड़ त्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़े आर कुड़े फिराहे असंग मलेच मल पाक खाहे असंग नंद से कराए पा

तू सदा सलाम निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर पार हो अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन

भगत रसाले होर कहते गावन से मैं चितनायामन नानकिया विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई है पी होसी दैन जसी रचना जिन रचाई रंगे रंगे पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख किता अपना जिवत दी वड्याई ज्योत पावै सोई कर से हुक्म न करना जाई सो पाठ साह साह साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोष शरण पचोली ध्यान की करै प्रभूत खिंता काल कुआरी काया दुग डंडा प्रतीत आई

जेव तात्मादन जात जाकर जन मन विहीन चकर भकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोग चौदह के विखे जग जाप ही जय जाप आदेवनाद मूर्त आप्यो सबै जे ताप परम नू पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विसर चिव स्वंभ गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्पंजन मुखदाय काम आप रूप मीक अनुस्त देख पुरख दूत गर्व गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतवार सर्व गंता सर्व हंता सर्व देह अनपेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र ना विवचित मदभार संत प्रसाद गुणगन उदार मेम पार आसन भंग मानंगन भाव प्रकाश निधन ना जान भाव शान छावर जान राज पनान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बलान बाल रंकान रंग कलान कालान भूदंगाबंगत पार गुंगान उदार मुनगा प्रणाम निर्मल काम प्रचंड मित गद खन लेशा कर्म दिशा धर्म सर्व प्रणांडन बाड़िय चाची छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निन्नामे अकामे भुजंग प्रजा छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर भरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर मानिए चतर चकर दानिए चाची छंद ना सतरे ना मित्रे ना भरम ना मित्रे ना कर्म ना गाये जन्म जाए ना चित्रे ना मित्रे ना मित्रे परे हैं पवित्रे पृथ्वी से आदि से अदृ से किर से भक्ति संतवा प्रसाद कत्ते के शिज दिसे के बिज पेसे के गंज कर्मे के पंज भरमे के बिज लोके के दत सोके के वदूत बढ़ने के विपूत करने के राजंग प्रवाह है के धर्म तुझा है के शोक बरने के सर्वा भरने के जगतंग कृति है के शत्रन क्षत्रिय है के ब्रह्मण स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चतरंग महीने के अधीने के रोज रजा के रही मेरा हाग के बाग व्यवल गैव के अबुल गुनाह के शान चाहे के कान कनने के रोजी रहने के राज के रही मैं के कर्म करी मैं के सर्वंग कलिये के सर्वंग दलिये के सर्वतर मानिये के सर्वतर दानिये के सर्वतर गौणे के सर्वतर पौणे के सर्वतर देसै के सर्वतर पेसै के सर्वतर राजे के सर्वतर साजे के सर्वत दीने के सर्वत लीने के सर्वत जाहो के सर्वत पाहो के सर्वत देश है के सर्वत पेस है के सर्वत काले के सर्वत पाले के सर्वत हंता के सर्वत गंता के सर्वत पेखी के सर्वत पेखी के सर्वत काज है के सर्वत राजे के सर्वत सुख है के सर्वत पुख है के सर्वत त्राणे के सर्वत प्राणे के सर्वत देश है के सर्वत पेस है के सर्वत मानिए सदेव प्रधानिये के सर्वत जापिए के सर्वत थापिए के सर्वत भाने के सर्वत माने के सर्वत इंद्रे के सर्वत चंद्रे के सर्वंकली में के परम पहिमे के अकल अलामे के साहिब कुल्लामे के उसण वजू हैं तमावल रजू हैं हमेशन सलामे सली खत्म दामे गनी मल से किचते जगरीवल परस्ते बेलंदल मुकाने जमीन जमाने तमी जल तमामे रसूल निदाने हरी पर जी मेर जाय कजकीने नेकल तरंग है पेर है भंग है जी जलवाज है ग्रीमल कराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है संयुक्त सदा है सेव स्वरूप है बेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सब साज है समस्त सुलाम है सदेव काम है निर्वाद स्वरूप है गाद अनूप है ओ अंगाद रूपे नाद स्वरूपे नंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंग त्रिवादे गंजे गादे सुभंग सर्वागे सुसर्वा अनुरागे
तो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है शिजय शूद है के नलकम प्रणास है प्रत्युल प्रवास है नृक्त प्रवाह है देव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चात्री छंद भंग है नंग है भीख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है

के कर्ण है। मन मानिए जग जानिए सर्व पर है सर्व कर है सर्वासी है सर्वनाश्य है करुणा करें बेस्वंबर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परदे पर है करुणा कर है जपा जपे थपा थपे आकीर्त कीर्त है मृत मृत है मृत मृत है करुण कीर्त है आकीर्त कीर्त है।

इस जग में आए कै क्या तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ श्री राजा तुझ जग में आया जिन्हर तेरा रचन रचया सो हर मन नाम साया गुरु प्रसादी हर मन मसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानके श्री प्रवान हुआ जिन सतगुर संजलाया इन नेत्रो मेरे और तुम में जो तरी हर बिन हुन देखो कोई हर बिन हुन देखो कोई नदरिया निहालिया ए विश संसार तुम देह देवर का रूप है रूप नदरिया गुरु प्रसादी पूजिया जा विकार कह हर वन कोई कहे नानके नेत्रन से सतगुरु मिलिया देव दृश्य सर्व मेरे साचे सुने उठाए साचे सुने उठाए श्री लाए सुने सतबाणी जस मतन हरिया हो रसम रसमाणी सचे लख वटाणी ताकीगत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पित्र हो वो साचे सुनने उपटाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रड़ किए दसवा कबूतर खाया गुरुद्वारे लाए भाव नी एक ना दसवा द्वार दिखाया तै नेक रूप नाव नाव निर्द तिसदा अंत जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया ए हो साचा सोहला साचे कर गावो गावो ता सोहला घर साचे जिथे सदा सत आवे सचो त्यावे जंत भावे गुरमुख जिना बुझावे ए हो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सोजन पावे कहे नान सच सोहला सचे कर गावे आनंद सुनो बड़भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पै सबसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु साहिब जीओ

ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ सज्जन सच्चा पातशाह सिर शान दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। सो कहो टल गुर सेवी है अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसी है गुरु के जन्म मरण दुख जाहे। दर्शन परसी है गुरु के जन्म मरण दुख जाहे। वाहे गुरु साहिब जी।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जिस लख समय पाए हुरम तिसनोगली अहो वजह विजुना खाए कसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए गला मोह मोह पाना खाए जिस जट

साहब जी ने सानू अपने नाल जोड़िया है। शुक्र है वाहिगुरु जी, आप जी का शुक्र है। हर सुआस ते कहिए वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। फिर एक दिन जदों दे शुकराने च आ जाईदा, फिर निहाल भी कर देंदे, कृपा भी कर देंदे। इहो जी बख्शिश, इहो जी कृपा जिहो जी किसे ने कदे संसार ते देखी ही नहीं हुंदी। आओ महाराज, अज दे पावन श्री मुख पात साहिब च यही बचन साड़ी चोड़ी पा रहे ने। महीने तो लगातार महाराज दी मेहर नाल कथा चल रही है। अज सुबह और दोपहर दे दीवान ने, बस उस तो बाद समाप्ति होगी। बड़ा महाराज जी की कृपा नाल आनंद बने है। बड़े प्यार वाले गुरमुख, गुरबाणी कथा कीर्तन सुन वाले रब दे प्यारे इस स्थान ते हाजरियां भरदे है। मातावां, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान अरदास करदे हैं महाराज इसे तरह जोड़ी रखन। आप सब नूं प्रेम भावना, सतगुरु का अदब, सतगुरु की बाणी का अदब बख्शी रखन। आओ चित बिरतियां एकागर करिए, सुनिए महाराज के वचनां नूं।

महाराज कृपा करन, ऐसा नाम दा रंग सानू भी चढ़ देन। जिहड़ा एक बारी चढ़ जाए मुड़ के लैंदा नहीं।

है कि यह खेड़ है वाहिगुरु जी और कुछ नहीं। रौनक मेला जा लग्या होया, बंदे भी बोर हो जाते हैं, ज्यादातर इको ही थान जा जा के आ आ के इको तरह दिया बंदियां नाल परत परत के रह रह के ये भी कुछ नवा पढ़ ले। फिर प्रकृति बनी हुई इदा दी है कि प्रकृति का हिस्सा साडा दिल है दिमाग है ते उदा दे विच ख्याल आंदे है जिदा दी इहदी होंद है उदा दा सुभा है। महाराज जी कहिंदे पर इह गल सच है कोई भी सुखी का पक्का रहण वाला नहीं जो इन्हें आप ही पक्या नहीं रहना शरीर ने पक्या नहीं रहना तो फिर ये सुख पक्के कितों रहेंगे। और माफ करना जो कदे दुख आ जाते कदे जिंदगी च ना उन्हां तों डर ना जाया करिए। आत्महत्या तक सोच लेंदे बंदे भले जे सुख नहीं रहे तो फिर दुखा ने कित्थे रहना। एक दिन उन्होंने भी चले जाना है रहना जे सुख नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा विधान है वाहिगुरु का। हां किन्नी क देर है वो कोई गल नहीं वो तो सुख दुख दोए दर कपड़े पहरा जाए मनुख कपड़े आंगू है जिमें कपड़ा उड़ी दा लई दा शरीर ते उमें दुख ते सुख ने। इस करके महाराज जी कहिंदे सुखां च वाहिगुरु नूं ना भुलो और दुखां च उहदा नाम जपना ना भुलो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सुखां च वाहिगुरु नूं भुलोंगे हौली हौली सुख चले जाणगे, दुखां च उहदा नाम जपना भुल जाओगे दुख तुहानूं मार सकदे आ तुहाडे नाल दगा कर सकदे आ तुहानूं किसे भी खूह च डेग सकदे आ पर जे उहदे नाम दे आसरे टिके रहोंगे फिर वह कख भी नहीं बिगाड़ सकते।

सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सिंह हुए सहाय।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तुम साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साकं, तू ठाकरी ऊच भगवाना, सो कहो टल गुर सेवी अहिंस सहज सुपाए,

प्रबल चंड कौ सक्यो वारा खो खट्यो पौरा नद गाय अष्टमाल कौशक संग लाई।

हर प्रभु कृपा करे हर जप हो सुख फल हर जन पाव हो नानक कह सुनो जन पाई सुख सोहिलड़ा हर त्याव हो सुन हर गुण पिने सहज सुपाए गुरमत सहजे नाम त्याए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया

स्वामी तिन अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाए। जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा। गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए। सहजे गुण गावे दिन राती, केल विख सब गवाए। सब को तेरा तू सबना का, हाँ तेरा तू हमारा। जुग में है

हदहदिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हर आपे जोड़ विछोड़े

महाराज जी नूं इह कहना चाहिया है, महाराज जी ये सोच के भी उम्र छोटी है। महाराज जी देखियो औरंगा बहुत माड़ा औरंगजेब बंदा चंगा नहीं, उहदे मत्थे ना लगे आप जी, जिवें बजुर्ग बच्चियां बारे सोच लें।

प्रेम भावना सहित अदब सहित होंगी रही। जदों दोबारे कदे महाराज साहब जी ने समा बख्शिया आप संगतां दे दर्शन करांगे।

अहन सहद सुभाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

तन तन संपै सुख दियो अर जैनिक तहाम कहु नानक सुन रे मना सिमृत काहे न राम।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगना संग अलापी अठ नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैरवी बुलावली पुन्या की गावे बंगली पनस लेखी की पई बारी ए पैरों की पांचो नारी पंचमर गुदसाग सुनावी बंगाल मद माधव गावे ललत बुलावल गावे अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव

गोपाल पंडित सदेवर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे, पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो।

चलो बोले सोनेहा सत्री अकाल। सो ये जिम्मेवारियां दी दस्तार ये नाल गुरु घर दी बख्श सरूपा जिहड़ा ओ महाराज ने इहनां नूं समर्था बख्शनी है। ये परिवार की देख रेख करनी अपनी माता दी अपने मम्मी दी इस तरह अपनी भैन जी बाकी सारे परिवार को देख के नाल लैके सारा इस दुख की घड़ी चो निकलना है। सो मैं अरदास करदा कि महाराज इन्हां दे परिवार को ये दुख झल्लण अते